0: ही को थाओ
1: कुदरत कवण कहा विचार मारिया न जावा एक बार
0: जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
1: हाथ पैर तन देहे पानी तो तय उतर से
0: मूत पलीती कपड़ होए जैसा बूंद लीजे ओ तोये
1: मत

0: तीरथ मन लाओ।
1: सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत न होए।
0: स्वास्थ पानी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ।
1: कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार,
0: कवन सिर

0: ईश्वर आखे सहज आखे केते कीते बुद्ध
1: आखे दानव आखे देव आखे सुनर मुंजन सेव
0: कीते आखे आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

0: आलस्य कारम दृश्य तरम सर्वापरण अंडांड बाड
1: गोविंदे
0: मुकांदे उदारिय पारी
1: चतर
0: चक्र कारता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
1: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पाती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने।

0: करीम है के सर्वम कली है के सर्वम कली है
1: सर्वत्र माने के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है
1: सर्वत्र दीन है के सर्वत्र ऋणी है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र बाल है
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र अंगंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र मान्य है सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र
1: के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र
0: है के सर्वं कली में के परमंग फही में के आकल अला में के साहिब कला में
1: रुजु मत मामल रुजु है में सो सलाम है सली खत्म दाम है
0: गरीब शिखस है गरीब परस है बिलंदल मकान है जमीन और जमान है
1: तुम अमर जो निदान हरि फल जी मर जाए कि यकीन है
0: अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीज अल निवास है गरीब अल
1: निरोग स्वरूप है तुम मुक्त भूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है
0: सदैव अंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
1: सलाम है सदैव काम निवास रूप है गाद अनूप है
0: गाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: निर्बाध्य गंजी है गादी सुभंग सर्वभाग्य सर्वभवन रागी
0: मुक्त स्वरूप है अचीज है अछूत है के नरकन पर नाश है पृथ्वी अल पर वास है
1: भगवान सदा भंग सदा भोग स्वरूप प्रजोक्त अनूप है
0: मुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है।

0: सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावल शांतवे प्रसाद
1: नमो नरकनाशि सदैवं प्रकाशय अनंगं स्वरूपे भंगं अभिभूते
0: परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
1: नंगी अनामी तरपंगी तरकाम निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
0: न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न काते न माते न जाते न पाते
1: सात्म श्री कमितो मी कसदैव प्रभ है जय है अजा है
0: भगवती शांत व प्रसाद
1: जा हर जूर है के हाजिर हजूर है में सुसलाम है समस्त कलाम है
0: के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
1: गरीब है के राज करहंद है करीमल कमाल है के सुनल जमाल है
0: गरीमल के राज है गरीबल निवाज है हलीफल शिकान है हरासल फिकान है।

0: समस्त निवास अंजन के नीम जाय करीम है।
1: समस्त जुबान है के साहिब के राह है के नरकन पर नासे हैं वैस्तल निवास है।
0: सर्व गवान ने विश्ववान ने तमाम तुम्हें जय समस्त अजीज है।
1: परम परमेश है समस्त अरीश है अरीश अलरेख है हमेश अलभे है।
0: जय नौ जमा मैं कोले मैं करीमल कुमार।

0: भगवान आसमन मन पर गाय गुण गान पर नाम जल थल मुदाम
1: उपमा
0: मन दस बस बन जल थल मन दस बस बेअंत
1: आजान बाहो एक
0: ओंकार आदि कथनीय नाद खल।

0: सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वपासे
1: है, सर्वनाशे है, त्रिनाकर है, विसंग पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है,
1: खलखंडस
0: है, परते पर है,
1: करुणा कर है, थपा तपा कृता कृत है, मृता अमृत है,
0: अमृता अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, तन्नी कृत है,
1: अंतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, मृता अमृत है,
0: अजब्बा कृत है, अमृता अमृत है, धननायक है, कलकायक है,
1: विसंग पर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्वपायक है,
0: पापंजन है, अर्गंजन

0: ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कवि उबाच बेनती चौपाई हमरी करो हाद रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा।
1: तब चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रित पारा।
0: हमरी दुट सब तुम काबू आप हाद मोहि बचाबो।
1: सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा।
0: रक्षा निज कर दे करिए सब रण को आस घरिए।
1: पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा।
0: कोई अवरण त्याऊं जो वर चाऊं तुम ते पाऊं।
1: सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सतर हमारे मारिय।
0: पाद मुझे भरिय मरण काल का त्रास निवरिय।
1: पूजो सदा हमारे पच्छा श्रिया तो जो करे हो रचा।
0: राख दे मुझे राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे।
1: दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता।
0: काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा।
1: काल पाए कर विषण प्रकाशा

0: पीर पछाने कट कट के पट पट की
1: जब कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा
0: जबा करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब
1: श्रेष्ठ सब तारा।

हालत पालत शोभा जग अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे सत संगत।

0: अपराधी दूना ने जो हंता मिर्गाय शीश नवाई क्या तेजरा दिखते दिखते जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबगल समादं मुक्चूट बेबुखन सारं त्रैपाल ते हल बिचारं गलमाला तिलक ललाटं दो तोती बस्त्रक पाटं जे जान सुब्रमं कर्मं सफोकर निच्चो कर्मं कहो नानक नेहचो थ्यावै बिन सतगुरु वाट न पावे।

नानक की प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई जा मां भ्यान दूत जम दलै ते केवल नाम संग तेरे चलै जब मुश्किल होवे अतपारी हर को नाम किन माए उधारी अन कुन चन करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सर्व श्रेष्ठ को राजा दुखी हर का नाम जब तो सुखिया ला करोरी बंधन पर हर का नाम ला करोरी बंधन पर है ला करोरी बंधन पर हर का नाम जब निस्तर है

ब्रह्म ज्ञानी होई अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदंदर लेप जैसे जल में क्यों ले, ब्रह्म ज्ञानी सदंदर धोक जैसे सुसर्प को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राय रंग को लाग तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक जो बसुद्धा को खोद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी कह गाओ उन्होंने जो पाओ का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मलते निर्मला जैसे मैल न लाग गया जला, ब्रह्म ज्ञानी के मनो प्रकाश जैसे तर उप्रकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उच्चे उच्चा मन अपने सब के नीचा, ब्रह्म ज्ञानी सृजन भय नान गिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सल किरी ना तमरस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा ना पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के पूजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी के नाई धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार नानक, ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम उदार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहो बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी के अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल मन तो, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए, ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माए, ब्रह्म ज्ञानी के कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथ न जाय अदा करो, ब्रह्म ज्ञानी सर्व पर ठा करो, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानना, ब्रह्म ज्ञानी के अंत न पार नानक, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक, और तहारा जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक वो परस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाई रसना परस मन में प्री निरंजन दर्स, पर त्रय रूप न पेख्या नेत्र, साध की चाल संसंग हेत, करना सुने काओ की निंदा, सत्य जने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हराय, मन की बासना मन ते टरै, इंद्री जत पंच दोग तेरै, नानकोट मदे को वैसा परस, बैसनो सो जी सुपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए पेन, कर्म करत एने कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काऊ फल की इच्छा नहीं बाशै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मानता ने अंतर सिमरन गोपाल, सब उपरोक्त कृपाल, आप जड़ै अपना नाम जपावै, नानक बैसनो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मल खोवै, तस भगवती की मत तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मंत्र नर पै बिसन प्रीत, हर के चरण दे बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम मत मैं शुद्ध राम नाम सार, पीवै उस पंडित के उपदेश, जग जीवर की गथर दे बसावै, सो पंडित फिर जो ना आवै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सुख मैं जाने अस्थूल,

som dig. Og hvor det ser som det er, bøger bedre til at savke sat. Og begynde at formestare, savke du gav gørne i har. Og steg bænne gav gørne i høje, tanten om tørre kæs og jeg på nej jolt av gørne i har, kåte gørne i rang i par. Man med åpne på nej mahe, nane ikke gimmet kæhen jai. Sat, sat, sat, bro, swami, guru, parasa, kini, vakhyani, sat, sat, sat, sat, kina, kod, madhe, kini, virale, jinnah. Pala, pala, pala, tarupaya, sundaraya, parnup, nirmal, nirmal, nirmal, teri bani, kadka, suni, sarmukhyan. Poetar, poetar, poetar, punita, nama, japa, nanak, manpri, salok. Sant, sharan, jojan, para, sudran, udran, hari. संत की निंदा नानिका बहर बहरे अवतार अष्टपदी संत का दुख निर्जा कटे संत के दुख जमते नहीं छूटे संत के दुख सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुख मात मिले संत के दुख सो बात है संत के हति को रखे न खोए संत के दुख तन प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संगत भीतर है संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जोल होवे संतन के दुखन सर्व जुन पाए संत के दुखन त्रिगित जोन किरमाए संतन के दुखन तिस नाम जले संत के दुखन सब को छले संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीचन जाए संतो की गाथा गुनाहे नानक संत पावे तो गीत विगत पाए संत कनंद कमात ताए संत कनंद कंड कन पाए संत कनंद कुमात यार संत कनंद परमेश्वर मारा संत कनंद राज तहीन संत कनंद दुख यार दीन संत कनंद को सर्व रोग संत कनंद को सदा जोग संत कनंद दुख में दुख नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख संत कदो की सदा पवित संत कदो की किसे का नहीं मित संत कदो की को डाल लागे संत कदो की को सब त्याग संत का दुखी मांगकारी संत का दुखी साविकारी संत का दुखी जन्म मरे संत के दुख न सुख ते डरे संत के दुखी को ना ही ठाव नानक संत पाव तले मिलाए संत का दुखी अदबी ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी अण भरमाई संत का दुखी जड़वाई संत का दुखी अंतर ते तो था जो सास बिना मृत किलो था संत के दुखी जलक चिनाए आपन भी जा पे खाए संत के दुखी करुण राखन हार नानक संत पाव ताले उभार संत के दुखी उंबिल लाए जो जल भिन मछली तड़फड़ाए संत के दुखी भुखा नहीं राजै जो पाव किद नहीं त्रप संत का दुखी छुटो अकेला संत का दुखी जो दुआल तिलकी तमाय दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत दुख समझ कैत कीर्ति निंदका तुरी पया नानक ज्योति भावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी को दरगे मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरण जवाई है संत का दुखी पूजने आसा संत दुख चले निराशा

अरे सदा सदा तुझको नमस्कार प्रभु के सुग्रो दिन रात तिसे त्याओ सास के राव सब कुछ वर्ते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया।

जिस को अर पमंच ते आवे सो सों सुए लाने डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवको किस ते डरे जैसा साता सा दिष्टा अपने कार्य में आप समाया सोध सोध सोध सीधिया गुर प्रसाद सा बुझिया जाओ देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोया सूल न कि जन्मे न कि मरे आपन चलते आप ही करें आवन जाम दृष्टिया दृष्टिया आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुग रजता भूता अविनाशी नाई किस खंड धारण तारो ब्रह्मांड पे पुर प्रताप आप जपाय ता नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सुभावंत सकल संसार उदर तिर मंत प्रभु कैसे उग सब उदाहरण प्रभु कैसे उग दू सारण आपे मैले कृपाल गुरु का सब जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पा विश्राम नानक तिन पुरुको तुम करमान जो कुछ करे सुप्रभ गे रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होय सो होय करण यार पछाण सोय प्रभु का किया जन मीठ लगा न जैसा साता सा दिष्टान जिस तवजे ते समाए समाए सुखन दान उन्हों गुण आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभु जने को जान सलो।